खासकर अधूरी है, बिकॉज इट हैपेंस जब हमने शुरू किया था. इनफैक्ट टीम ने मुझे ये कहा था कि आप जैसा शो लेकर जाना चाहें आप ऑन एयर जा सकती हैं. तो जब मैंने इट हैपेंस चूज किया था आपके लिए, तो मुझे यही लगा था कि यार मॉर्निंग शो है, तो मॉर्निंग शो में कुछ ऐसा बेहतरीन होना चाहिए जो ऑडियंस को खुद से जोड़े, है ना. हम ऑडियंस से किसी भी प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडियंस खुद के साथ कनेक्ट करती है, लिसनर्स खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको आपकी इम्पॉर्टेंस बताना इस शो का मकसद है, और यही हम हर रोज कोशिश करते हैं. आज भी इस शो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको आपकी इम्पॉर्टेंस बता सकें, और आपकी इम्पॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में है. मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ही कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो किसी की वजह से भी रुकती नहीं है. कोई भी काम किसी की वजह से नहीं रुकता, लेकिन आप उस काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर निभा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के हर काम को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, डील करते हैं उसके साथ में, राइट. तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभा रहे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, और इस दुनिया में रहना, हेल्दी और स्ट्रांग रहना आप डिजर्व करते हैं. इसलिए जनाब ये सारा लेक्चर इसीलिए था कि ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करें. और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे. कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रह्मानी 1701 AM. आपके साथ इस सफर में सताक्षी है.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इस एक और गाने के बाद आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, कुछ लोग ना हमें खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कुछ लोग हमारे साथ चलना सीखते हैं पर हमारे साथ जब रुकने की बात आती है तो वो हमारे साथ रुक नहीं पाते। कुछ लोगों से शुरुआत में सब कुछ मिल जाता है मगर फिर उनसे मांगना पड़ता है। ये कब बदल जाते हैं खुद वो भी नहीं समझ पाते। बात बस इतनी सी है कि नसीब में जो जितना लिखा है उसका उतने ही वक्त हमारे साथ साथ भी लिखा है। और कहते हैं ना कि नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, और इसीलिए शायद नसीब जब इनके साथ जितना बंधा है वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो ये बदल जाते हैं, ये हमसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर आपसे भी किसी ने दूरी बना ली है तो बस ये याद रखिए कि उसके साथ आपका साथ जो है वो शायद इतना ही था। यह बहुत मुश्किल होता है अपनों को भूल पाना जिन्हें आप मन से अपना मान लेते हैं, बट कभी कभी यही सच है और यही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी 1701 AM सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो बुरसानी 1701 AM पर और इस इट हैपेंस के बेहतरीन और खास सफर में दोस्तों आपके साथ आज सताक्षी आपका साथ एक बार फिर से निभा रही है और हम आपके साथ आप ही की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास और जिंदगी के एहसासों से भरी प्यारी बातें और बॉलीवुड के कुछ गाने शेयर कर रहे हैं। जिंदगी जिंदगी जो है वो कहने को बहुत आसान है, मतलब हम भी कहते हैं ना आपसे कि यार जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं, जितनी आप समझते हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है। वो रोज की जद्दोजहद, वो रोज की तू तू मैं, वो रोज के स्ट्रगल्स, रोज गोल्स की तरफ अपने कदम बढ़ाना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन ये आप करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, अच्छी तरह से मालूम है कि जिंदगी के लम्हे जो हैं वो जिंदगी जीने में है, जिंदगी जाया करने में नहीं। एक एक पल के साथ अपनी जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, अपनी इस जिंदगी को जीना पड़ता है और इसे इसकी खूबसूरती को महसूस करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये जिंदगी जो है ये हमारी बन पाती है, वरना तो हमेशा ये जिंदगी शिकवे शिकायतों में ही निकल जाती है। तो जिंदगी आसान है नहीं, इसे आसान करना पड़ता है। इसी एक बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ, सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

0: Phantom number carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, आपका और मेरा आज एक और खूबसूरत और प्यार भरा साथ। और बात करूंगी अभी उनसे जो अकेलेपन से बहुत परेशान है, जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है और जो चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा लोग रहें। तो देखिए जनाब, अकेलापन एक टाइम तक ही दर्द देता है, उसके बाद इसका एक गहरा नशा हो जाता है। फिर अकेलेपन के साथ रहना लगता है कि अपने किसी बहुत ही गहरे दोस्त के साथ है। जी हाँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इंसान मजबूत होता है ना, वही अकेला रह सकता है, क्योंकि कमजोर को हमेशा भीड़ या सहारे की जरूरत होती है और वो भीड़ या सहारा ही खोजता है। इसलिए अगर आप अकेले रह सकते हैं या अकेले रहना जानते हैं, तो सच में आप में बहुत गट्स हैं और आप बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग हैं। और इसी बात पर एक और गाना सिर्फ आपके नाम। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कहते हैं पीपल विल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जी हाँ, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें वैसा ही तो लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी। अब आपको लगेगा कि सताक्षी क्या मतलब है कि जो लोग हमें हर्ट करते हैं क्या हम उनसे कहते हैं कि वो हमें हर्ट करें। देखिए, आपको क्या लगता है अगर किसी एक बंदे ने आपको हर्ट किया है तो उसमें उसकी गलती है? नहीं ना, उसने तो कई बार ये कोशिश की है कि आप हर्ट हो, आप परेशान हो। वो तो आप ही को लगता है ना कि रिश्ता इतना गहरा है कि इस रिश्ते को हम निभा लेते हैं, बचा लेते हैं, और आप बार बार उसे मौका देते हैं। तो अब जो बताइए कि आज जब आप हर्ट हुए तो गलती आपकी है या उसकी है? लोगों को बार बार मौका देना भी एक्चुअली हमारी गलती है। अगर आप किसी के भी साथ हैं, उसको एक कॉफी पर जाने के लिए भी आपसे पूछने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हमें अपने पूरे ऑरा के अंदर ना एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, उसको उस लाइन को, सामने वाले को उस लाइन को क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई हमें कुछ भी कह के चला जाए। और ये बात हमारे अपनों पर भी, जिन्हें हम अपना बड़ा खास समझते हैं, उन पर भी लागू होती है। ध्यान रखिए इस बात का, अगर आपको कोई परेशान करता है, तंग करता है, तो हर बार नहीं लेकिन बहुत बारी आप भी उतने ही जिम्मेदार बन जाते हैं। जाने अनजाने ही सही, लेकिन ये सच है। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। और चलिए, ये ट्रैक अभी आपके लिए है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही प्यारे होते हैं, इतने प्यारे कि वो चालाकी शब्द को जानते नहीं है, उनके अंदर चालाकी होती ही नहीं है। और ये बात ना, ये हमें किसी और से जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात उनकी आंखों में, उनकी बातों में नजर आती है। आप कुछ पता है वो लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि शायद उन्होंने खुद ने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, इतना दर्द सहा है, लोगों ने उनको इतना चीट किया है कि अब उन्हें लगता है कि बस ये दर्द जो है ये बहुत गहरा होता है और कम से कम उनकी वजह से ये दर्द, ये पेन किसी को ना हो, इसीलिए वो कभी कुछ ऐसा काम नहीं करते

दोस्तों ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और बेहतरीन सा साथ। जी हाँ, कुछ खास बातों और बेहतरीन लम्हों के साथ आज की सुबह की हमने शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि ये सुबह जो है ये आपकी जिंदगी की बेस्ट सुबह होगी। तो चलिए एक और मॉर्निंग के साथ कल सुबह फिर से मिलूंगी आपसे, लेकिन आज इस सफर से इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे। आज लेते हैं विदा और जब तक हम और आप मिलते हैं, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड इज ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही। मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वह ना सिर्फ सेहत दे बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी तां कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तां अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उहनां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उहनां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वन एम ते 4-6 संदेश शलक दे नाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा ना उस नूं सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे क्योंकि वह भट्ट खानदान दे नाल जुड़िया होया है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई थी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।

0: कंटीन्यूअस फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साडे विचकार नहीं है के पर नाम होना तो है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा दे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन दी लत दे कारण उन्हां दे करियर दे विच गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान दा नाम भी इस विच शामिल है। ड्रग्स अते शराब दी लत दे कारण फरदीन खान नूं रीहैब जाना पै गया सी, जिस नाल उन्हां दे करियर नूं झटका लग्गिया। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर अते समिता पाटिल दे बेटे प्रतीक बब्बर दा करियर भी नशे दी लत करके ही प्रभावित होया हैगा है। तां इह सारे नाम हैगे ने जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट विच शामिल है।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
10: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर जेनिबा के साथ। थोड़ी सी देरी हो गई 3 मिनट की, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और आपको तो पता ही है, आपसे मिलने के लिए हम एकदम बेसब्र रहते हैं, बेकरार रहते हैं। कभी भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, नेटवर्क में खराबी आ जाती है और तकनीकी इशू की वजह से जब हम आपसे नहीं मिलते तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ जो है वो हमने संभाल लिया है और अब हम आपसे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? अच्छा फील कर रहे हैं, अमेजिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप फ्राइडे की ओर जा रहे हो और मुझे तो पता ही है कि फ्राइडे की ओर जाने की जो खुशी है वही अपने आप में अलग है। बट चलिए, ये सब तो अलग बात है, वो तो हम करेंगे ही, कल भी बात होगी इसके बारे में, परसों भी होगी। लेकिन अभी हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो है वो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे गाने के साथ ही शुरुआत होती है ना, आपको पता ही है ये बात। सो गाने के साथ शुरुआत अच्छी होगी ही, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही हेल्दी और इम्पॉर्टेंट रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। आपने सुना होगा किसी को कि किसी को गुस्सा चढ़ा हुआ तो कोई कहता है कि ओके ओके गहरी सांसें लो, गहरी लो, ओके ओके ओके लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। ये सच में काम करता है और ये सब गुस्से में नहीं बल्कि स्ट्रेस में काम करता है। अगर आप फोकस नहीं हो, कुछ भी है, मतलब अगर आप कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हो ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट। सो आइए सबसे पहले करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ ऐसे अच्छा अच्छा फील करते करते सुनाते हैं आपको पहला गाना, जो कि है बंधु 2.0। अब आपने कॉकटेल का गाना तुम ही हो बंधु तुम ही सखा, वही वाला एग्जैक्टली वो सुना है, राइट? सो ये कॉकटेल 2 का गाना है और इसका है, इसको कहा गया है बंधु 2.0। अब देखें क्या मैजिक क्रिएट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि बाकी कॉकटेल 2 के गाने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सर्फ करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों ये गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर इसकी लाइन पे, एक लाइन पे मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान गया और मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हर गम संग तेरे सहना जी, मतलब जो सारे गम है वो तेरे साथ सहने हैं। लेकिन हम गमों को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लिटरली आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब ये जो राइटर्स हैं इनको खुशी के बारे में जो है वो बात करनी चाहिए। वेल ऑफ कोर्स आई एम गोना से कि बात यहाँ पर सही है कि गम जो है उसमें भी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट पार्टनरशिप इज लाइक। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हर दुख में तुम्हारा साथ देंगे, हर सुख में भी तुम्हारा साथ देंगे। आई थिंक सुख अगर हम बोलेंगे तो हम सुख ही मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर हम सुख मैनिफेस्ट करेंगे तो यूनिवर्स हमारी सुनेगा, तो गम हमें देगा ही नहीं यूनिवर्स। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये तो बहुत ही पेचीदा सी बात है, डू यू रियली बिलीव इन दैट? वेल आई काइंड ऑफ बिलीव इन दैट। यू नो व्हाट द थिंग इज कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक और चीज समझ आई कि हम लोगों को जो चीजें बोलनी है वो बहुत ही ध्यान से बोलनी है, लेकिन हम जिन लोगों को जो चीजें सुननी है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है। हमेशा कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं यूनिवर्स हमें देता है, लेकिन ये नहीं बोलता कोई हमें कि जो हम सुनते हैं वो भी यूनिवर्स हमें देता है, जिस चीज में हम अपना कंफर्ट ढूंढते हैं वो भी यूनिवर्स हमें देता है। सो कभी कभार हम सैड सॉन्ग्स को सुनते हैं और हमें इतना मजा आता है, हमें ऐसा लगता है वाह क्या सैड सॉन्ग लिखा है, तब चाहे हमारे पास उस सैड सॉन्ग को मतलब रिलेट करने की कोई वजह भी ना हो, लेकिन फिर यूनिवर्स कहता है अच्छा तुमको सच में सैड सॉन्ग सुनने हैं, तुमको सच में इसके साथ रिलेट करना है, ओके लेट मी गिव यू द रीजन। या दैट्स हाउ इट हैपेंस। एंड यू नो व्हाट, दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट जस्ट मी, ये बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टिंग टेक्नीशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों को अच्छी चीजें सुननी चाहिए, खुशी वाली चीजें सुननी चाहिए, खुशी वाली चीजें बोलनी चाहिए, खुशी वाली चीजें हमेशा सोचनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें करते हो तभी यूनिवर्स आपको खुश रखने के लिए पूरा का पूरा प्रबंध करता है। सो अगली बार से जब आपको सैड सॉन्ग्स में मजा आने लगे, अपने आप को रोकिए, सोचिए कि ओ ना ना ना ना ना ना ना ना, हमें इनसे रिलेट करने की कोई वजह नहीं चाहिए, सो वी आर नॉट गोना एंजॉय इट। जस्ट सुनिए और उसको वहीं छोड़ दीजिए, डोंट ट्राई टू रिलेट, डोंट ट्राई टू यू नो वाइब विद इट, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है उसमें, बिकॉज यूनिवर्स सब कुछ देखता है, सुनता है और फील करता है। जो आप फील करते हो वो यूनिवर्स भी फील करता है। सो इससे पहले वो आपको कुछ वजह दे वो सब गाने सैड सॉन्ग फील करने के, उससे पहले रुक जाइए। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब जरा चलते हैं सीधा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम का हालचाल जानना जरूरी है। हमारी प्लानिंग, हमारे सारे के सारे काम मौसम पे कहीं ना कहीं तो डिपेंड करते हैं। सो आइए सबसे पहले जरा जानते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहा आज। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील आपको हो रहा है 21.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में, विच विल बी क्वाइट ठंडा फॉर यू। एंड अगेन कोजी होके रहिए, अपने आप को ठंड से बचाइए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, ये तो सारी बातें हुई कि टेम्परेचर कैसा है और रात को कैसा रहने वाला है। अब जरा बात करते हैं बारिश की सिचुएशन की, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी और अभी भी नहीं दिख रही है मुझे। जी हाँ, एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार यानी कि एकदम फेयर। और अगर वहीं फ्राइडे की बात की जाए, आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे है, फ्राइडे की बात की जाए तो 30% चांसेस है बारिश होने के विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बादलों की सिचुएशन रह सकती है आसमान में, धूप भी मिलेगी, बादल भी मिलेंगे। सैटरडे को भी 23 डिग्री सेल्सियस के साथ 50% चांसेस है बारिश होने के। जी हाँ, सो ये है अगले दो दिन का टेम्परेचर, जो कि मुझे थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है। बट कल 30% चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। सो ऑफकोर्स उसके लिए आपको डरने जरूरत नहीं है, आपको मोस्ट प्रोबेबली सूरज अच्छे से मिलने वाला है। बीच में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं बट उसके अलावा बाकी सब मुझे बढ़िया नजर आ रहा है। ये है मौसम का हाल, और जो कि बिल्कुल मजेदार है। मैं कहूंगी कि ठंड में धूप मिलती रहे ना, उससे ज्यादा अच्छी सुकून की बात कुछ नहीं हो सकती है। सो धूप को सेकिए और अच्छे से मजा लीजिए। संतरा खाइए, जी हाँ मैंड्रिन खाइए, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाइए, क्योंकि जो विटामिन सी आप धूप में बैठ के कंज्यूम करते हो ना, बड़ी अच्छे से काम करती है आपके लिए। आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा सबसे पहले हो जाए बात एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, और वो है आपकी फरमाइशें। भाई, आपकी फरमाइशों के बिना हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं है, हमारी वाइब नहीं बनती। इवनिंग वाइब की वाइब आपसे ही तो है। सो वो वाइब बनाने के लिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपना फोन उठाना है और अपने फेवरेट गानों के साथ, अपने पसंदीदा गानों के साथ आ जाना है। जी हाँ, और आपको करना क्या है, आपको एक नंबर डायल करना है। वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और आप जब तक भेज रहे हैं अपनी फरमाइश हमें, हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, एक चीज मैंने इंटरनेट पे कल पढ़ी, सोशल मीडिया पे पढ़ी, और वो इतनी ज्यादा सेंस बना रही थी कि मुझे मैं ऐप के साथ शेयर करना पड़ेगा। वो तो उसमें लिखा हुआ था कि मनुष्य ने खुद पैसा बनाया और अब खुद ही उसको कमा रहा है। क्या है ये माजरा? जी हाँ, and I was like, wow, wow, wow। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंटरनेट पे जितने लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना, उतने म्यूजियम्स में भी नहीं दिखेगी आपको। पर बात में दम है भाई, मनुष्य ने मतलब इंसानों ने खुद ही पैसा बनाया और अब खुद ही उसको कमा रहा है। भाई ऐसी चीज बनाई क्यों जिसको कमाना पड़े? मतलब हम कोई सिस्टम थोड़ा अच्छा सा नहीं बना सकते थे, कुछ डिफरेंट सा, जहां पर हमको काम नहीं करना पड़ता, मतलब काम करना पड़ता पर ऐसे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। मतलब हमने डिसाइड किया कि पैसे से सब कुछ वो होगा और अब हम पैसा कमा रहे हैं। सो पैसा हमने पहले बनाया और अब हम पैसा कमा रहे हैं। आई वाज लाइक, या दैट्स ट्रू। जिसने भी ये बोला, मेरा सैल्यूट है आपको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लगता है आपको, क्या हमें फिर से बाटा सिस्टम में वापस चले जाना चाहिए? इफ यू डोंट नो व्हाट बाटा सिस्टम इज, लेट मी टेल यू। बाटा सिस्टम इज, जब आपके पास कुछ चीज होती है और आप उसको सामने वाले को वो चीज देते हो बदले में जो चीज आपको उनसे चाहिए होती है। जी हाँ, अब ये सारी चीजें पहले होती थी, लेकिन हम पैसा ले आए और पैसे के बल पे हमने ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। इसीलिए अब हम जो है वो टेक्निक की ओर जा रहे हैं। मतलब सोचो, अगर हम बार्टर सिस्टम में ही होते तो कितना सही रहता। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब मेरे पास सेब होता और आपके पास केला होता, मैं आपको सेब देती, आप मुझे केला देते। जी हाँ, मेरे पास चेरी होती, आपके पास प्लम होता, मैं आपको चेरी देती, आप मुझे प्लम देते, है ना? मतलब ऐसे होता और ऐसे ही चलता रहता। अब क्या है, कुछ लोगों के पास पैसा हो गया लेकिन उनके पास प्लम चेरी कुछ नहीं है, वो सिर्फ पैसे के बल पे वो सारी प्लम चेरी केला सेब सब कुछ खरीद रहे हैं। जी हाँ, रिजल्ट क्या है? हम AI बना रहे हैं, फालतू की चीजें बना रहे हैं और हम खाने की चीजें नहीं बना रहे. एट द एंड ऑफ द डे द ह्यूमन नीड टू अंडरस्टैंड कि खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा. एआई सारा पानी चूस जाएगा, खाना खाने के लिए जमीन नहीं बचेगी, पैदा करने के लिए जमीन नहीं बचेगी. इंसानों का क्या होने वाला है? वेल वी डोंट नो, बट जिसने भी ये सोचा कि पहले पैसा बनाया और खुद

अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा प्यार, टेंशन मत लो, नहीं होगा। जी हाँ, कहीं प्यार ना हो जाए। आई थिंक इस गाने में जितनी बार मैंने ये लाइन सुनी है, कहीं प्यार ना हो जाए, क्या ही प्यार, यूनिवर्स ने भी सुन लिया होगा अभी तक, नहीं होगा प्यार आपको, टेंशन मत लो। जी हाँ, यहाँ पर अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में। जी हाँ, सो जब भी मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कहीं तो कुछ लोग जो है वो अच्छे हैं इस दुनिया में। आई नो, आई नो, मेरे लिसनर्स सब अच्छे हैं, आपको नहीं बोल रही हूँ, आप सब अच्छे हो, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। सो एक ब्राजीलियन स्काई डाइवर लुइगी केनी ने जो कॉन्वर्सेशन है कि जो डिफॉरेस्टेड जोन है अमेज़न का, उसको फिर से जो है वो पेड़ों से भर देने की जो कॉन्वर्सेशन है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। जी हाँ, और वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट पे चले गए उसको पूरा करने के लिए। जी हाँ, सो एक स्काई डाइवर जिनका नाम है लुइगी केनी, वो लिटरली एक बायोडिग्रेडेबल कंटेनर के साथ उन्होंने जंप किया प्लेन से, और उस बायोडिग्रेडेबल कंटेनर में थे 100 मिलियन सीड्स फॉर Amazon प्रोजेक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, इट्स नॉट अबाउट कि पेड़ों को काटना, क्या करना, मतलब हम सब एक चीज प्लान करते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, इस बंदे ने अच्छा करने का सोचा, इस बंदे ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं नहीं Amazon रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जो अभी कुछ सालों से जो है वो बहुत ज्यादा क्षति हुई है, ऑफ कोर्स वाइल्ड फायर्स की वजह से बहुत ज्यादा क्षति हुई है, और ऐसे में हम लोगों की ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगी आगे के आने वाले कुछ सालों में। सो उन्होंने सोचा कि जो डिफॉरेस्टेड जोन है Amazon का, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल कंटेनर के साथ जंप किया एयरक्राफ्ट से, और फिर उसमें 100 मिलियन सीड्स को जो है उन्होंने स्प्रेड कर दिया हवा में ही, और वो सारे के सारे सीड्स जो हैं वो वहां पर नीचे पहुंच गए। गेस व्हाट, इट्स अ रेन फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स उनको लगने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां भर भर के बारिश होती है, वहां सब कुछ होगा, एंड गेस व्हाट, वो जो कॉन्वर्सेशन है जो हम कहते हैं कि यू नो व्हाट, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम कितना ही करते हैं, बट ये बंदा, इस बंदे ने उसको सीरियसली लिया, ना सिर्फ सीरियसली लिया बल्कि ऐसे स्वैग के साथ इसे किया कि लोग आने वाले टाइम तक याद रखेंगे। जी हाँ, सो इसकी एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर उन्होंने 27 नेटिव ट्री स्पीशीज के जो सीड्स है वो ऊपर आसमान से उस बायोडिग्रेडेबल कंटेनर से गिराए, और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ट्रीज जो हैं वो फॉर्म करेंगे, मतलब वो सीड्स जो हैं वो पेड़ों की फॉर्म में आएंगे, और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का प्रबंध होगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम एआई के पीछे भाग रहे हैं, एआई हमको सांस लेने में हेल्प नहीं करेगा, ऑक्सीजन करेगी। आज से मैं एक चीज जरूर बोलने वाली हूँ, जब भी मैं किसी नेचुरल चीज के बारे में बात करूंगी, ऐसी चीज के बारे में बात करूंगी, मैं एआई के खामियों के बारे में भी बात करूंगी। सो या, ये बंदे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। एंड यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
14: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
13: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
14: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
13: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
14: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
13: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
14: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलता रहता है और एक बहुत ही फनी डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है. और ये डिबेट कुछ ऐसी है कि इंडियन लोग कह रहे हैं कि स्पेनिश लोगों ने सब कुछ चुरा लिया. यूरोपियन लोग सब कुछ हमारा चुरा लेते हैं, हमारा फैशन चुरा लेते हैं, हमारी जूते, चप्पल, कपड़े, फैशन, हर कुछ वो चुरा लेते हैं और हमें क्रेडिट भी नहीं देते. अब इन्होंने हमारी गेम भी चुरा ली. जी हाँ, ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडियन लोग कह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया. एंड व्हाई आर दे सेइंग इट, आइए आपको बता ही देते हैं. सो एक गेम, एक ट्रेडिशनल स्पेनिश स्पोर्ट्स कॉल्ड बिलाडा जो है वो वायरल हो गया है इंटरनेट पर, जहां पर लोग जो हैं वो बिलाडा खेलते हुए नजर आ रहे हैं. जी हाँ, ये गेम जो है वो पॉपुलर है स्पेन के गैलिसिया रीजन में और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सेम दिखती है गिल्ली डंडा जैसी. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट गिल्ली डंडा. सो इफ यू डोंट नो व्हाट गिल्ली डंडा इज, यू शुड सर्च फॉर इट, बिकॉज अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी एग्जैक्टली गिल्ली डंडा क्या होता है. बट द थिंग इज कि इंडियन लोग इसे बहुत सालों से, सेंचुरीज से खेलते हुए आ रहे हैं. इंडियन लोगों का कहना है कि जो गिल्ली डंडा है वो एक इंडियन स्पोर्ट है जो कि 2000 सालों से इंडियन लोग खेलते हुए आ रहे हैं. और यहाँ पर स्पेनिश लोग ये कह रहे हैं कि हम भी इस गेम को बहुत ज्यादा पुराने तरीके से और बहुत ज्यादा पुराने टाइम से जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं और इसका नाम बिलाडा है. जी हाँ, अब ऑफकोर्स जब ये वीडियो वायरल हुई तो बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं उन्होंने धावा बोल दिया एकदम से कि क्या, ये तो हम बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, क्या नई गेम है? अरे, ये कोई नई गेम है, ये तो हम बहुत पुराने टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, बचपन में हमने यही सब तो खेला है. अरे, तुम लोगों ने अभी से ईजाद किया, हम तो बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे. अब ये सब बोलते रहे तो स्पेनिश लोग भी ट्रिगर हो गए. दे वर लाइक, ओ रियली ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, बिकॉज इसका नाम बिलाडा है, नॉट गिल्ली डंडा। आई मीन गिल्ली डंडा आपकी भाषा में हो सकता है, पर बिलाडा हमारी भाषा में है। और यहाँ पर ये कहना कि ये तुम्हारी गेम है, ये तो गलत है। जी हाँ, लेकिन इंडियन लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। अब आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा इसमें इंडियन लोगों की क्या गलती है, वो सच बोल रहे हैं। गिल्ली डंडा बहुत सेंचुरीज से इंडिया में खेलता हुए जो है वो लोग आ रहे हैं, अब ऐसे में वो स्पेन में भी खेला जा रहा है और बिल्कुल सेम सेम चीज, टेक्निक सेम है, दिखने में भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वेल डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जब स्पेन से कोई बंदा यहाँ पर भारत में आया होगा घूमने फिरने के लिए, उसने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए और वहां पर उसने सोचा होगा कि ये तो बड़ी मजेदार गेम है, वहां पर हम भी खेलते हैं, और स्पेन में लोगों ने ये खेलनी शुरू कर दी होगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द रियल रियल फैक्ट, वेल ये फैक्ट हम जरूर जानेंगे और आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे कि किसने एग्जैक्टली इस गेम को पहले खेलना शुरू किया। बट द थिंग इज कि यूरोप हमारी चीजें कॉपी करना बहुत टाइम से सीखा हुआ है और वो हमें क्रेडिट भी नहीं देता है, फिर चाहे हमारी कोल्हापुरी चप्पल हो, यू नो, फिर चाहे हमारा चाय हो, फिर चाहे हमारी इतनी सारी चीजें हो, लाइक लिटरली मतलब हम काउंट कर सकते हैं कितनी सारी चीजें। सो ये सारी चीजें यूरोप कॉपी करता है, हमको क्रेडिट भी नहीं देता और ये कहता है कि अरे इसे तो हमने इजाद किया है, इसीलिए तो ह्यूमंस या जो इंडियन ह्यूमंस है ना उनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जी हाँ आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है, और क्या आप जब इंडिया गए हो या कभी आपने इंडिया विजिट किया है तो आपने गिल्ली डंडा खेलते हुए किसी को देखा है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि गिल्ली डंडा एग्जैक्टली क्या है। वेल सर्च कीजिए और फिर मुझे बताइएगा क्या आपके भी बचपन से एसोसिएटेड है ये गेम। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब सीधा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है दुनिया में, वॉर फ्रंट पे, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान से, क्योंकि ईरान की बुद्धि भी यहाँ घास चरने चली गई है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को मरवा के मानने में ही जो है वो मानेगा। और आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा इतनी खतरनाक स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि अब दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि ये उसको पूरी तरह से जो है वो इसको इसका फायदा ले सकते हैं इस पीस डील का, क्योंकि उन पर सेंशंस जो है वो कम होने वाली है। सब कुछ जो है वो उनके हिसाब से जो है वो हो रहा है, लेकिन यहां पर भी वो गड़बड़ कर रहे हैं। जी हाँ, सो अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर साइन होने के बाद बोले गलीवाफ, ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। आखिरकार किस बारे में बात हो रही है? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए MOU पर साइन हो गए हैं। हालांकि ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीवाफ ने कहा है कि भले ही अंतिम समझौता हो गया हो, लेकिन ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। BBC फारसी के मुताबिक गलीवाफ ने कहा कि वो अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शीर्ष कमांडर हज कासिम की हत्या का मास्टरमाइंड मानते हैं। दरअसल मोहम्मद बगर गलीवाफ ईरान की वार्ता टीम का हिस्सा है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मन नहीं होते हुए भी निभाई। मोहम्मद बगर गलीवाफ ने ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद से बातचीत टीम में शामिल नहीं हुआ, मेरा मन नहीं था, फिर भी ये काम किया। खुद से इस जिम्मेदारी को ना लेने की एक ये वजह भी थी कि ट्रंप की हज कासिम की हत्या के मास्टरमाइंड हैं। जनरल सुलेमानी पूरे इस्लामी जगत के लिए प्रिय थे, लेकिन मेरे लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मायने रखते थे। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि आपको लगता है कि मेरे लिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई टेक्स्ट तैयार करना आसान होता। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका पर मेरा अविश्वास और निराशावाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर दस्तखत होने के बाद गलीवाफ ने कहा कि भले ही ये समझौता आखिरी हो और सुरक्षा परिषद से मंजूरी भी मिल गई हो, फिर भी मैं भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी असली गारंटी ईरान की ताकत है।

जी हाँ दोस्तों, तो जो मैंने कहा था, मेरी स्टेटमेंट थी कि मुझे लगता है ईरान की बुद्धि घास चरने चली गई है, वो मैंने क्यों कहा था, आइए जरा अब आपको बताते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि गलीबाफ की नाराजगी किससे है और वो भरोसा नहीं करते हैं ट्रंप पे। वेल, आप नहीं, हम भी भरोसा नहीं करते, लेकिन यहां पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक है और ऐसे में ध्यान से खेलना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ, अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते के बावजूद बोले गलीबाफ हॉर्मुज स्ट्रेट से फीस वसूली जाएगी। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाफ ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से फीस वसूली जाएगी, जबकि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में यह कहा गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं वसूलेगा। गलीबाफ ने सरकारी टीवी इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जंग से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभुता का अधिकार है और जाहिर है कि हम इसकी सर्विसेज के लिए शुल्क वसूलेंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले वेंस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान समझौते पर साइन किए। 14 बिंदुओं वाले समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। इसके मुताबिक ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अब फीस वसूली जाएगी। क्या कहा जाए इस मामले में? जी हाँ, वहां कहा गया कि कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन यहां ईरान कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो फीस वसूलेंगे, हम इसे पहले की तरह नहीं जाने देंगे जैसे पहले होता था। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसी सिचुएशन में वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो इंटरनेशनल वाटर वाला इलाका है, इंटरनेशनल वाटर्स पे किसी का भी हक नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लाइक व्हाट इज ही इवन टॉकिंग अबाउट? यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कहा गया है। जी हाँ, अमेरिका ईरान समझौता, पाकिस्तानी पीएम ने बताया क्या होगा पहला कदम। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों देशों को बधाई दी है। ऑल्दो ये सिर्फ ईएमयू साइन हुआ है, अभी भी समझौता पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी बात होगी अगले 60 दिन तक, और उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि कैसे कौन सी क्या टर्म्स रहेंगी। फिलहाल के लिए जो टर्म है उन्हें ईरान ही नहीं मान रहा है, अमेरिका तो पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। लेट्स सी यहां पर मिस्टर शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह समझौता तुरंत प्रभाव में लागू होगा। इसके पहले कदम के तौर पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा और अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद एमओयू इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन हुआ है। यह समझौता दोनों देशों के राष्ट्रपति ने साइन किया है और मैंने बतौर मध्यस्थ इसे मंजूरी दी है। उन्होंने लिखा, दोनों सरकारों ने के उच्च स्तर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करना यह दिखाता है कि दोनों पक्ष संघर्ष का हल बातचीत से निकालने के लिए गंभीर हैं। इस्लामाबाद एमओयू तुरंत लागू होगा। पहले कदम के तौर पर ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा और अमेरिका तुरंत नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेताओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिनकी बातचीत के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता और शांति को प्राथमिकता देने की सोच ने एक बार फिर से ऐसे संघर्ष को खत्म किया। ओह माय गॉड, वो गुरु ये चेला वो गुरु। ओह, यही बात आती है मेरे मुंह में जी हाँ, जब भी मैं इनके बारे में बात करती हूँ, लाइक दिस शहबाज शरीफ एंड दिस डोनाल्ड ट्रंप। मतलब या वी ऑल नो कि वाई दिस दोस्ती हैज हैपेंड। मतलब ऑफकोर्स दे नीड डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप फैमिली को उन्होंने आधा पाकिस्तान बेच दिया है। सो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पर ये सब तो होना ही था, बट द थिंग इज कि यहाँ पर आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एमओयू साइन हुआ है, पीस डील पूरी तरह से होनी बाकी है, जो कि डिस्कस होगी अभी धीरे धीरे करके, और वो धीरे धीरे करके क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गलीबाफ ने कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर शुल्क तो वसूला जाएगा जहाजों से। वेल, कहा तो ये गया था कि वो खुला रहेगा और फ्री रहेगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब आपका स्वागत है ट्रंप के रोस्टिंग सेशन में, बिकॉज ही गिव्स अस सो मच कंटेंट और वो कंटेंट हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो आपको तो पता ही है कि G7 समिट में पहुंचे हुए हैं मिस्टर ट्रंप और वहां पे वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स भी हैं। वेल ऑफकोर्स उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट तो यही थी कि जॉर्जिया मेलनी ये कह रही थी मिस्टर मोदी को कि वी आर द इट कपल ऑफ G7। आपको पता है G7 के हम फेवरेट कपल है, द फेमस, द मोस्ट फेमस कपल इन G7। या दैट्स व्हाट शी सेड। एंड जय शंकर वहां पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, वो भी हाईलाइट बन गया। बट ये सब छोड़ के हम बात करने वाले हैं मिस्टर ट्रंप के बारे में, क्योंकि ये ट्रंप रोस्टिंग सेशन है, किसी और का नहीं। सो G7 समिट में एक मीट में जहां पर लिटरली बहुत सारे AI टेक इंडस्ट्रियलिस्ट्स बैठे होते हैं, वहां पे सभी के सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वहां पर बैठे हैं, वहां पर एकदम से ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं आई एम द बॉस। या यू नीड टू शाउट दैट आउट, यू नीड टू शाउट इट आउट बिकॉज नोबडी नोज यू आर द बॉस। अगर आप नहीं बोलोगे तो उनको लगेगा कौन आ गया ये चिंगू मिंगू कौन आ गया ये। जी हाँ, वो ऐसे सोचने वाले। सो ऑफकोर्स इट्स अ गुड थिंग कि आपने खुद ही बोल दिया कि आई एम द बॉस। जी हाँ, और जब उन्होंने बोला आई एम द बॉस तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि सब ऐसे कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कि जब भी अगर आपको ऐसी किसी मीटिंग के बारे में देखना है और आपको इस मीटिंग के बारे में अच्छे से जानना है तो जॉर्जिया मेलानी के एक्सप्रेशंस को देख लिया करें। जी हाँ, जॉर्जिया मेलानी इज सो जजी कि उनके आई रोल्स जो है वो लिटरली अपने आप में फेमस है। मतलब जितनी वो फेमस है उनके आई रोल्स जो है वो अपने आप में अपनी ही लीग में फेमस है। सो बस फिर क्या है, फिर मिस्टर ट्रंप बैठ जाते हैं और उनके बाजू में बैठे हैं होते हैं सैम ऑल्टमैन। ऑफ कोर्स यू नो राइट, चैट जीपीटी के सीईओ, चैट जीपीटी के कर्ता धरता। और वहां पर वो कहते हैं कि यहां पर मेरी चेयर जो है, यू नो व्हाट, आई हैव द स्मॉलेस्ट चेयर हियर। जी हाँ, लोएस्ट चेयर हियर। जी हाँ, आई हैव द लोएस्ट चेयर। तो सैम ऑल्टमैन कहता है कि यू नो व्हाट, इट्स द UN। जी हाँ, और बस फिर क्या है, फिर मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई हैव द लोएस्ट चेयर हियर। वो मेक श्योर करते हैं कि सारी की सारी जनता वहां पे सुने। अब वहां पर और भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो कनाडा के जो PM है वो कहते हैं मार्क कॉनी के, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम इधर आ जाओ, तो मेरे पप्पू तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, मैं तो उधर बैठ जाता हूँ, डोंट वरी तुम मेरी चेयर ले लो। ऑफकोर्स अब और क्या करें, मतलब ट्रंप इज नॉट 80, ही इज जस्ट 8, बिकॉज द थिंग्स ही डज, वो 8 साल से छोटा बच्चा, 8 साल से बड़ा बच्चा तो कर ही नहीं सकता, छोटा नहीं बड़ा बच्चा तो कर ही नहीं सकता। मतलब वहां पे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और उस बंदे को अपना ही चल रहा हुआ है। जी हाँ, आई एम द बॉस। जी हाँ, सबको बता रहे हैं। उसके बाद बैठ के फिर कह रहे हैं आई हैव द लोएस्ट चेयर, यू नो व्हाट, आई हैव द लोएस्ट चेयर, मुझे बड़ी चेयर चाहिए। बस फिर क्या था, मार्क कॉनी बेचारे सोचते हैं कि इस बच्चा, अरे मेरे बच्चों इधर आ जा, तो इधर बैठ जा, मैं उधर बैठ जाता हूँ, डोंट वरी। या ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप यू कैन सिट ऑन माई सीट एंड आई विल सिट ऑन योर सीट, सो डोंट वरी। बट उनके दिल में तो यही था कि कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और ये बंदा चला रहा है अमेरिका को, क्या होगा अमेरिका का। या वो तो यही सोच रहे होंगे, और वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो कनाडा को भी अमेरिका में चलाना चाहता है। मतलब अपना तो काम खराब है ही, कनाडा का भी करना चाहता है। जी यहां पर ये सब G7 की वो AI मीट में हुआ जब उन्होंने ये किया, क्योंकि उससे पहले सब उनको इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सब इग्नोरेंस तो मुझे नहीं चलेगी। एंड यू नो व्हाट, ही इज सच अ अटेंशन सीकर कि ही मेड श्योर कि सारी अटेंशन जो है उन पर आ जाए। एंड गेस व्हाट, जब उन्होंने कहा आई हैव द लोएस्ट चेयर, उसके बाद जॉर्जिया मेलानी ने फिर से एक आई रोल किया एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड, कोई इस इंसान को चुप करवा दो। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने मन में इटालियन में बोला होगा, नाउ आई डोंट नो हाउ टू से इट इन इटालियन, बट द थिंग इज कि इटालियन में कोई ये बोलेगा तो और भी फनी हो जाएगा, कोई इसका चुप कराओ, कोई इस पप्पू को चुप करवाओ। जी हाँ, या सो ये सब हुआ। एंड ट्रंप बींग ट्रंप, या एटलीस्ट हम हंस रहे हैं, सो आई थिंक इसका क्रेडिट तो उन्हें जाता है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आप में से कितने लोग फॉलो कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप को? वेल, फीफा वर्ल्ड कप तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और आप लोग बोलोगे कि क्या बात है, हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, मतलब वी आर फीफा फैन, वी आर फुटबॉल फैन, वी आर सोकर फैन। एंड मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपको वो फीफा वर्ल्ड कप की बॉल मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे हैं नीवे शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बॉल मिल जाए फीफा वर्ल्ड कप की, अरे हम तो क्लाउड 9 पर झूमते हुए तुमको नजर आएंगे। वेल वेल वेल, फीफा वर्ल्ड कप की बॉल तो मिली नहीं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे एक बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ जो कि खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन उतना खतरनाक हुआ नहीं, बच गया भगवान की कृपा से। और ये जो है इंसिडेंट वो हुआ है जहां पर एक जाइंट इन्फ्लेटेबल वर्जन ऑफ 2026 वर्ल्ड कप बॉल ब्रोक फ्री ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स इन एल सल्वाडोर। जी हाँ, सो एल सल्वाडोर में ये चीज हुई है जहां पे एक बहुत ही जबरदस्ती बड़ी सी बॉल जो है, जो कि वर्जन है 2026 की वर्ल्ड कप बॉल का, वो एक बड़ा सा वर्जन जो है वो रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने तो ऑफकोर्स उसे इसलिए रखा था कि ऑफ कोर्स यहाँ पर यू नो एक्साइटमेंट बनाया जाएगा, इस बॉल से जो है वो माहौल क्रिएट किया जाएगा पूरी की पूरी तरह से, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है एंड दे वांटेड टू सेलिब्रेट फीफा, दे वांटेड टू यू नो व्हाट जो है वो चीयर करना चाहते थे वो अपने प्लेयर्स को, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बॉल जो है वो हवा तेज चलने से खुद ही जो है वो झूमना शुरू कर देगी। जी हाँ, वहां पे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चली, तूफान आया और वो बॉल जो है जहां पर रखी हुई थी वहां से वो खुद ही निकल गई और वो इतने खतरनाक तरीके से निकल गई कि रोड पे पहुंच गई, रोड पे लोग घूम रहे हैं, वो गाड़ियां चला रहे हैं और वो एकदम से देखते हैं कि वहां पे एक बड़ी सी बॉल जो है उनके रास्ते में आती हुई नजर आती है। अब आप सोचिए कि आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते करते आपको सामने से एक बहुत ही ह्यूमंगस बॉल, फुटबॉल बॉल जो है वो नजर आती हुई दिखती है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा आपका? यू विल बी लाइक ओ वाओ, नो यू वोंट बी लाइक दैट, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दैट, yeah, that's what you're gonna be reaction. So, यहाँ पर वही हुआ। Well, of course, उसके बाद जो है वो अथॉरिटीज आई और उसने उस बॉल को वो ले जाया वहां से, वो ले गए, उसने काबू किया और लोग जो है वो भी बच गए, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। But the thing is कि it could have been dangerous. So, मैं यही कहूंगी कि फीफा वर्ल्ड कप तो ठीक है, आपको इंस्पायर करना है प्लेयर्स को वो भी ठीक है, आपको चेयर करना है वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें मत बनाओ कि लिटरली वो खतरनाक बन जाए। बट या इट वॉज अ फनी सीन, जैसे वो बॉल आई है रोड पर वो बड़ा फनी सीन था, बट ऑफकोर्स इट वॉज डेंजरस टू। सो या आप मुझे बताइए कि आपने भी ये वीडियो देखी है या नहीं देखी है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

0: गम तेरे।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको तो पता ही है हमारा फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है। ये गाना जब शुरू हुआ था तभी से हमारा सेगमेंट शुरू हो गया था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नान अदर देन बट द ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट, हमारा फेवरेट सेगमेंट। गेस व्हाट, हमारे पास फरमाइशें भी पड़ी हुई है इस सेगमेंट में प्ले करने के लिए, और हमें हमारे लिसनर ने जो फरमाइश करता है उन्होंने पहले कह दिया था कि इस गाने को ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट के लिए रखिएगा। जी हाँ, एंड आई वॉज लाइक ओके विल डू दैट फॉर श्योर, एंड थैंक यू सो मच आप सबका प्यार जो फरमाइशों के रूप में हमारे पास आता है और हम लोगों के दिल में बस जाता है। सो आइए बिना देर किए हुए ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का अगला गाना आपके लिए प्ले करेंगे, और ऑफिशियली आप अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं। शर्त यही है कि आपको भेजनी होगी पुराने गाने से रिलेटेड कोई फरमाइश, और हम उसे आपके लिए प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और साथ में आपको किस्से भी जो कि है पुराने उनको सुनाने के लिए तैयार हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: जी हाँ दोस्तों, जब भी बात होती है पंचुअलिटी की, टाइम पर पहुंचने की, और वो कौन से स्टार्स थे जो टाइम पर आने के लिए बहुत तकरे करते थे, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है राजेश खन्ना का। जी हाँ, राजेश खन्ना का आता है। दूसरा नाम आता था शत्रुघ्न सिन्हा का, और उसके बाद नाम आता था संजीव कुमार जी का। जी हाँ, अब इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कैसे ये लोग बहुत ज्यादा लेट आया करते थे, और बड़ी बड़ी हीरोइनों ने, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, फिर चाहे वो दूसरी और एक्ट्रेसेस हो, सब ने इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। बट जो सबसे फनी तरीके से कहा है ना, वो है मौसमी चटर्जी। मुझे नहीं पता, पर वो जब भी कुछ कहती हैं, वो इतने फनी तरीके से कहती हैं कि मतलब आपको हंसी नहीं भी आनी थी तो भी आ जाएगी। जी हाँ, मौसमी चटर्जी कहती है कि जब भी मतलब पंचुअल हीरोज की बात हो, हार्डवर्किंग हीरोज की बात हो, तो जितेंद्र जो है वो सबसे ऊपर माने जाते हैं। एंड ये सिर्फ मौसमी ने नहीं, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने कहा है, क्योंकि जितेंद्र जो है वो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हुआ करते थे। अब वो पंक्चुअल नहीं है, अब उन्हें कहीं भी जाना हो तो वो पंक्चुअलिटी फॉलो नहीं करते, बट पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले वो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते थे। लेकिन यहाँ पर मौसमी चटर्जी कहती है कि एक जो कि लिटरली 8:30 9:30 की शिफ्ट में 8:30 आ जाया करते थे, यानी कि जितेंद्र, उनकी बात वो कर रही थी, जीतू जी की बात कर रही थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो 8:30 आया करते थे कुछ तो, और कुछ 9:30 की शिफ्ट में 3:30 आया करते थे। जी हाँ, मतलब तब पैकअप का टाइम हो जाता था, तब वो आते थे शूटिंग करने के लिए। और यहाँ पर वो नाम लेती हैं, कहते हैं हाँ, एक हो गए राजेश खन्ना, एक हो गए संजीव कुमार, और एक हो गए शत्रुघ्न सिन्हा। मतलब ये टाइम पे आएंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, इनको टाइम पे आना ही नहीं है। जी हाँ, वहां जितेंद्र जो है वो 9:30 के शिफ्ट के लिए 8:30 ही तैयार हो जाते थे। इनफैक्ट उनके साथ काम करने वाले लोगों ने यह भी कहा है कि वो खुद लोगों को होटल में कॉल किया करते थे कि जल्दी जल्दी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, फिल्म का टाइम होने वाला है, शूटिंग का टाइम होने वाला है। जी हाँ, खुद भी उठ जाते थे, खुद भी तैयार हो जाते थे, और बाकियों को भी कॉल कर देते थे। जी हाँ, अब ऐसे में उनसे पूछा गया कि आप क्या 2-3 शिफ्ट किया करती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी एक्ट्रेसेस 2-3 शिफ्ट किया करती थी। तो मौसमी चटर्जी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक ही शिफ्ट करती थी, मैं तो पहले ही शर्त रख देती थी कि मैं एक ही शिफ्ट करूंगी, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो घर पे मच्छी कड़ी खाकर अपने हस्बैंड से लड़ाई करके मैं तो घर पे ही खुश हूँ। जी हाँ, ओनली एंड ओनली मौसमी चटर्जी कुड से दैट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने कभी उनके इंटरव्यू नहीं सुने, जरूर सुनिए। एक्ट्रेस तो वो जबरदस्त है ही, और खूबसूरती उनकी तो मतलब बा कमाल रही है, लेकिन उनके इंटरव्यूज वो और भी ज्यादा फनी है। मतलब बंदी खुद ही बोल रही है कि अगर लेना है तो लो, मैं तो पहले कह देती थी कि एक ही शिफ्ट में काम करूंगी, लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी कड़ी खाकर और हस्बैंड से लड़ाई कर मैं तो घर पे ही खुश थी। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि है फरमाइशी गीत, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। मैंने कहा ना प्रोग्राम के बहुत स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया था, इस गाने की फरमाइश कर दी थी, पर उन्होंने कहा था कि ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में वो चाहेंगी हम इसे प्ले करें। सो थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए। ये रहा आपका गाना बिना देर किए, आई डोंट नो देर हुई है या नहीं हुई है, बट हमने ट्राई किया कि देर ना हो। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना जब से तुम्हें देखा है। आगे की बात कहने देते हैं इन्हीं को।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। जी हाँ, कल आएंगे, और कल है फ्राइडे। बल्ले बल्ले बल्ले, शाबा शाबा शाबा। आप लोगों लगे निवे शर्मा, तुमने तो अभी ढोल बजा दिया। वेल, ढोल बजा के ओ यारा जश्न मना के। आप लोग बोलोगे कि निवे शर्मा अब तुम गा भी रही हो। नहीं नहीं, गाओ मत, इंजॉय करो पर बिना गाए। जी हाँ ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ। ओके ओके ओके, जा रही हूँ।

ना मैं फ्राइडे को प्ले करती हूँ, लेकिन मेरे लिसनर हैं एक बहुत ही खास, जस्सी जी, जिनकी फरमाइश है ये। गाने का नाम है चाहे कोई मुझे जंगली के। फॉर नाउ ये आज हम प्ले कर रहे हैं, ऑल्दो दिस इज अ वेरी फ्राइडे सॉन्ग फॉर मी, क्योंकि फ्राइडे जब होता है ना तब आपको ऐसा लगता है कि ये ऑफिस, ये कॉरपोरेट और ये बॉसेस और ये मैनेजर के चंगुल से निकल कर चाहे कोई मुझे जंगली कहे। पर ठीक है, फरमाइश आज आ चुकी है तो हम आज ही प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशों के लिए। ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये गाना, बाय, सी यू, टाटा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।
3: आंखें खुली हो या

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन के उत्तर में ब्रूस हाईवे के अपग्रेडेशन का काम लगातार लेट होने की वजह से आज सुबह भी रोज आने जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और खराब मिट्टी की वजह से काम की डेडलाइन आगे बढ़ती जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इनफैक्ट ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और ब्रूस हाईवे पर ट्रैफिक का संकट अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, ब्रिस्बेन में गिरफ्तारियां। जी हां, ब्रिस्बेन पुलिस और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्वींसलैंड में बड़े पैमाने पर चल रहे ड्रग इंपोर्ट के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्रिस्बेन के पेट्री इलाके में बने एक सेफ हाउस पर छापा मारकर भारी मात्रा में कोकीन और कैश बरामद किया है।

0: वहीं ब्रिस्बेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी बिजनेस अवार्ड्स। ब्रिस्बेन के लोकल बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल के क्वालिटी बिजनेस अवार्ड्स का ऐलान हो गया है। ब्रिस्बेन सीबीडी में बेस्ट ड्राई वॉल और प्लास्टर बोर्ड इंस्टॉलेशन के लिए बीएनई प्लास्टर को 2026 का विनर चुना गया है। वहीं ब्रिस्बेन में विंटर फेस्टिवल की शुरुआत, जून का महीना है और ब्रिस्बेन में सर्दी का मौसम अपनी रंगत बिखेर रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आज से कई विंटर फेस्टिवल और फूड मार्केट्स की शुरुआत हो रही है। वहीं ब्रिस्बेन रेंटल मार्केट पर नई रिपोर्ट, ब्रिस्बेन में रहने वाले किरायेदारों और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए एक जरूरी खबर। आज जारी हुई एक नई रियल एस्टेट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्बेन के इनर सबर्ब्स के मकानों में किराए में पिछले कुछ हफ्तों में स्थिरता देखी गई है, जिससे लंबे समय से महंगे किराए से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं ब्रिस्बेन के स्कूलों में ग्रीन कैंपस ड्राइव, जी हां, और बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करें तो ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज से स्थानीय स्कूलों में एक नई ग्रीन कैंपस ड्राइव की शुरुआत की है। इसके तहत बच्चों को रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडिया यूके ट्रेड डील पर लगी मुहर। सबसे पहली बड़ी खबर बिजनेस बाजार से जुड़ी हुई है। भारत और यूके के बीच लंबे समय से चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीईटीए डील आखिरकार फाइनल हो गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि यह ऐतिहासिक समझौता अगले महीने 15 जुलाई से पूरी तरह लागू हो जाएगा। वहीं एयरपोर्ट्स पर फुल बॉडी स्कैनर की तैयारी, जी हां, अब भारत में हवाई सफर करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने देश के चार बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स के साथ साथ श्रीनगर, जम्मू और अयोध्या एयरपोर्ट्स पर भी फुल बॉडी स्कैनर लगाने का काम तेज कर दिया है। वहीं डिफेंस प्रोडक्शन में भारत का नया रिकॉर्ड, देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की साइबर ठगों को कड़ी चेतावनी, जहां ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया है। वहीं टेलीग्राम ऐप पर बैन पर बड़ा खुलासा, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर हाल ही में लगे बैन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ऐप पर पूरी तरह पाबंदी लगाने से पहले टेलीग्राम के बड़े अधिकारियों को कई बार बुलाकर चेतावनी दी गई थी। वहीं बंगाल की राजनीति में फिर हलचल, जी हां, राजनीति के गलियारे से एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता में बीती रात तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की सिक्योरिटी कवर को अचानक हटाए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता, अब रुक करते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ, जहां एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक 14 पॉइंट समझौते पर साइन कर दिए हैं। इस डील के बाद सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि व्यापार के लिए बेहद जरूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता दोबारा खुल गया है। वहीं G7 समिट में पीएम मोदी की अपील, फ्रांस के एवियन लेस बेंस में चल रही G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के सामने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में चल रहे युद्धों और संघर्षों का सबसे बुरा आर्थिक असर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर पड़ रहा है। वहीं पेंटागन चीफ का नाटो प्लान, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने ब्रसेल्स में नाटो देशों की मीटिंग के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप के देशों को अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद आगे बढ़कर उठानी चाहिए। वहीं भारत यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड डील इसी साल। भारत के ग्लोबल बिजनेस को लेकर दुनिया से एक और अच्छी खबर है। यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐलान किया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड डील पर इसी साल के आखिर में साइन कर दिए जाएंगे। वहीं अमेरिका में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम की बात करें तो इस वक्त अमेरिका के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कैलिफोर्निया और उसके आसपास के इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा फैसला इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। ग्लोबल एविएशन अथॉरिटी ने उड़ानों के दौरान होने वाले कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया महामुकाबला। जी हां, स्पोर्ट्स लवर्स का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से फुटबॉल के सबसे बड़े मंच फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर है। इसी के साथ चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका की साख दांव पर फीफा वर्ल्ड कप में के ग्रुप ए में आज रात एक और कांटे की टक्कर होने वाली है, जहां चेक रिपब्लिक का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। वहीं वर्ल्ड कप में उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक डेब्यू। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। उज्बेकिस्तान की टीम आज कोलंबिया के खिलाफ मैदान पर उतरकर अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी। वहीं रग्बी लीग के नए स्टार बिशप नील की चर्चा। रग्बी की दुनिया में इस समय सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। 19 साल के बिशप नील 194 सेंटीमीटर लंबे और 113 किलोग्राम वजनी इस युवा खिलाड़ी को रग्बी लीग का अगला बड़ा सुपरस्टार कहा जा रहा है। वहीं T20 लीग्स की विंडो पर ICC का नया ऐलान। क्रिकेट की दुनिया से खबर है कि ICC आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट और दुनिया भर की T20 लीग्स के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक नया शेड्यूल तैयार कर रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
8: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
7: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
8: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
9: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: Bahia, suco, suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या, suco, suco! Ai, ai.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही। मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसौनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी, वह ना सिर्फ सेहत दे बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी तां कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तां अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उहनां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उहनां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वाने हम ते चार छे संदेश शलक दिना उससे बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तो उसी हैरान जरूर हो जाऊंगे क्योंकि वो पट खानदान दे नाल जुड़े हुए है। आलिया पट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब दी लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब दी लत दी वजह नाल बुरी तरह दे नाल प्रभावित भी हुई सी जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही। मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.
6: से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
7: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम होना था है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा दे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नू रीहैब जाना पै गया से जिस नाल उन्होंने करियर नू झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो यह सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट शामिल है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the Big Day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जीवन बहुत खूबसूरत है, ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आपको अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन और आप सभी के बीच लेकर आई हूं बहुत सारी बातें, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की कुछ ताजा खबरें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी दिलचस्प बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चांदनी आपको सुनाएगी बहुत ही बेहतरीन गीत, ताकि आप सभी की मॉर्निंग बहुत ही बेहतरीन जाए। तो इस बेहतरीन बेहतर बनाने के लिए आइए फिर एक कप चाय हो जाए और एक कप कॉफी हो जाए, ताकि हम अपनी इस बातों को कंटिन्यू रखें और आपको गीत सुनाते रहे। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रजवाणी में। आइए सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रजवाणी।

हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जानने का सफर। तो इस सफर में आइए शुरुआत करते हैं कुछ ब्रिस्बेन की ताजा खबरों के साथ, अपडेट्स के साथ। दोस्तों, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की तैयारियां जो है लगातार आगे बढ़ रही है। विक्टोरिया पार्क में नए ओलंपिक स्टेडियम के लिए शुरुआती कार्य जो है वो शुरू हो चुके हैं। एथलीट्स विलेज और कई नए खेल परिसरों की डिजाइनिंग जो है उस पर भी काम चल रहा है। वहीं पर क्वींसलैंड सरकार का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स है सिर्फ ओलंपिक्स के लिए नहीं बल्कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक बड़ी विरासत छोड़ेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली अपडेट की ओर। ब्रिस्बेन के लोकप्रिय यानी कि फेमस सनकॉर्प स्टेडियम में एक बड़ा अपग्रेड घोषित किया गया है। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का पहला हालो स्क्रीन लगाया जाएगा, जहां पर नए एंटरटेनमेंट जोन और टेरेस व्यू एरियाज भी बनेंगे। इससे आने वाले वर्षों में बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स और कॉन्सर्ट जो है उनका अनुभव और शानदार होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि और भी बहुत सारी अपडेट्स आप सभी को मैंने जरूर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। आप बस इंजॉय कीजिए इस गीत को ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

हाँ जी, तो आइए फिर कुछ वेदर अपडेट जान लेते हैं। क्वींसलैंड में इस साल जो है सर्दियां सामान्य से गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्रिस्बेन में अगले कुछ हफ्तों तक तापमान औसत से ऊपर रह सकता है। एल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले जो महीने हैं उनमें गर्म और अपेक्षाकृत सूखा मौसम यानी जो ड्राइनेस है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों कुछ फैक्ट्स की बात भी करेंगे थोड़ी ही देर बाद, लेकिन उससे पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन के साथ जाने के सफर में। आशा करती हूँ आप सभी का ये सफर बेहतरीन जा रहा होगा और आप सभी बहुत ही सेफली ड्राइव भी कर रहे होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और क्वींसलैंड की राजधानी है। ये शहर जो है ना, हर साल लगभग 280 से अधिक धूप वाले दिनों का आनंद लेता है, जिसके कारण इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे पसंदीदा लाइफस्टाइल सिटीज में गिना जाता है। जी हाँ, ये है हमारा ब्रिस्बेन। जी बिल्कुल। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुछ बात करते हैं घूमने फिरने के। अब वीकेंड आ रहा है जी, तो दोस्तों आप सभी का मन कर रहा होगा घूमने का दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन रिवर के किनारे बने जो साउथ बैंक है, हॉवर्ड स्मिथ वार्व्स है और जो कैंगरू पॉइंट है, वो आज भी स्थानीय लोगों और जो टूरिस्ट है उनके सबसे पसंदीदा घूमने के प्लेस में शामिल है। वीकेंड है और वीकेंड पर अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। तो आप भी इन जगहों पर जा सकते हो। अगर आप जा चुके हो तो दोबारा यहाँ पर जाकर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आनंद लेते हैं इस गीत के साथ, ओनली ऑन रेडियो बिस्वानी।

हाँ जी, वेलकम बैक है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो प्रेसवाणी में। तो आइए जी, बहुत बातें हो गई है इधर उधर की, अब बातें करते हैं थोड़ी सी फिल्मी की। जी हाँ, यानी थोड़ी सी फिल्मी दुनिया में जाना तो बनता ही है। दोस्तों, इस हफ्ते बॉलीवुड में कई दिलचस्प अपडेट्स जो है वो सामने आई है। मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने पहली बार मलयालम सिनेमा में कदम रखने का ऐलान किया है। जी हाँ, उनकी नई फिल्म जो है ओडियन, उसमें पृथ्वीराज, सुकुमारन और मंजू वारियर जो है वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और ये फिल्म जो है 5 लैंग्वेजेस यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज होगी। वहीं पर दोस्तों, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन के हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चाएं बहुत ही तेजी से है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उन्होंने एक प्रमुख अमेरिकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है, जिससे कि उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की संभावनाएं बढ़ गई है। तो है ना गुड न्यूज़। तो आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो बिस्वानी।

वेलकम बैक है जी आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो हमने फिल्म दुनिया में जाकर बहुत सारी बातें की है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले देशों में शामिल है। हर साल जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में 1500 से अधिक फिल्में बनाई जाती है, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्में जो है वो फेमस है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। यही थी आज की फिल्मी दुनिया, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई फिल्में, नए सितारे और नए किस्सों के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी मुझे फीडबैक्स देते रहें और आप सभी को ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की बहुत सारी खबरें, अपडेट्स मिलती रहें। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित ड्राइव करें और जुड़े रहें रेडियो ब्रिस्बेन में। और मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, हमेशा खुश रहें एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करेंगे G7 देश। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की G7 नेताओं ने अहम बैठक की है। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने स्टॉक जमा करने के लिए तालमेल बिठाने के साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बड़ी भूमिका वाले एक नए सहयोग मंच के लिए योजनाएं बनाई। पश्चिमी देश रक्षा टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी धातुओं के स्रोतों में विविधता लाने और चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने की होड़ में लगे हैं। ये आसान नहीं था, अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने आधिकारिक रूप से एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान वर्साय पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में इस शांति समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि कर दी गई है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। नीट री एग्जाम के लिए मिशन मोड पर वायुसेना, 4 दिन में भरी 200 उड़ानें। आगामी 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी की परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश की सेना को मैदान में उतार दिया है। भारतीय वायुसेना पिछले 3-4 दिनों से देश भर के 18 तय जोन्स में परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने के काम में जुट गई है। इस बेहद गोपनीय और बड़े मिशन की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जो अब लगभग पूरा होने वाला है। इसका उद्देश्य है कि सरकार इस बार परीक्षा को लेकर कोई जोखिम न उठाए। हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिका के सामने उठाया सख्त कदम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दुनिया में इन दिनों एक शब्द खूब चर्चा में है, डिमार्च। हाल ही में ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज के साथ हुई गंभीर घटना के बाद भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका को औपचारिक डिमार्च सौंपा है। भारत ने दिल्ली में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को बाकायदा तलब किया और अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। विपक्षी दलों में बगावत से बदला संसद का गणित, परिसीमन बिल पास कराने से अब कुछ ही वोट दूर, DNA। भारत की राजनीति ने पिछले 2 हफ्तों में एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी उम्मीद 1 महीने पहले तक किसी को नहीं थी। इस पूरे राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर संसद के आगामी मानसून सत्र में देखने को मिला, जहां सरकार एक बार फिर महिलाओं के आरक्षण पैकेज से जुड़े संविधान संशोधन और परिसीमन बिल को पास करने की तैयारी में है। बता दें कि इसी साल अप्रैल में एकजुट विपक्ष के चलते लोकसभा में ये अहम बिल मात्र 54 वोटों की कमी से गिर गया था, लेकिन अब परिस्थितियों के पूरी तरह बदल जाने से ये बिल दोबारा अगर संसद में आता है तो इसके पास होने की संभावना तेज हो जाएगी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7:00 हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। कहना चाहेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी फ्राइडे। आज 19 जून है, अभी से लेकर 9 बजे तक साथ रहेगा हमारा ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा मॉर्निंग है और आप बाहर है, शायद वॉक पर निकले हैं या फिर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। चलिए आप सुबह का आगाज करते हैं।

9 after 7 सुबह का सफर में आप शामिल हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, मैं हूं आपके साथ ही नीलम। चलिए देखते हैं कि आज फोरकास्ट में क्या बताया गया है ब्रिस्बेन के लिए। 12 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे आज के 24। वीकेंड सैटरडे को बताया है 65% चांस ऑफ रेन बताया गया है, टॉप्स रहेंगे 24। संडे को 95% चांस रेन रहेगा और उसका टॉप्स रहेंगे 20। मेलबर्न के लिए 12 डिग्रीज अभी है और टॉप है, आज का हाई टेम्प है 14। और कैनबरा के लिए 12 डिग्रीज है, पॉसिबल लाइट रेन बताया गया है, टॉप्स रहेंगे 13। सिडनी के लिए 17 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 19। और रेनी कंडीशंस बताया गया है। गोल्ड कोस्ट के लिए बताया गया है 14 डिग्रीज अभी है, 23 टॉप्स रहेंगे, विंड गस्ट 14 किलोमीटर एन आवर, 80% चांस ऑफ रेन बताया गया है आज गोल्ड कोस्ट के लिए। सनशाइन कोस्ट 16 डिग्रीज अभी है, पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22। विंड गस्ट बताया गया है 11 किलोमीटर एन आवर और आज 60% चांस ऑफ रेन बताया गया है सनशाइन कोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: दोस्तों, सुबह का सफर में शामिल हैं आप और आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक अपडेट्स हमारे पास कोई नया नहीं है, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स में जो रिजल्ट्स, जो एक्चुअली रिपोर्ट्स आए हैं, सॉरी, सेंट पॉल्स टेरेस यहां पर क्रैश हुआ था, विच इज नाउ बीन क्लियर्ड। बर्गडेल रोड, बर्गडेल में यहां पर भी क्रैश हुआ था, तो ऑल डायरेक्शंस इज नाउ क्लियर्ड। सेंगेट रोड वर्जीनिया क्रैश, यहां पर नॉर्थ बाउंड इज नाउ क्लियर्ड। रास्ते पर है आप, अपना बेहद ख्याल रखिएगा दोस्तों। फ्राइडे है, सभी लोग की कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी रहती है, और स्कूल डे भी है, आप बच्चों को भी ड्रॉप कर रहे हैं, तो थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे को ही आपको लेट होना होता है, तो उसमें भी कैचअप अप्लाई करते रहते हैं आप जब तक अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते। जो भी आप कर रहे हैं, रास्ते पर है, अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा पहले निकलिए ताकि आपको हैरानी ना हो। और क्या होता है कि जब आप रश करते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, और पूरा दिन ही कैचअप आप करते रहते हैं, एंड समटाइम्स इट्स नॉट रियली नाइस टू प्ले कैचअप थ्रू आउट द डे। सुबह आप अगर आपका अच्छा नहीं होता है, आप लेट रन करते हैं, एंड देन द एंटायर डे यू आर रनिंग लेट फॉर सम हाउ द अदर, तो ऐसा होता है, एंड यू फील दैट वे। समटाइम्स यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, बट यू स्टिल फील कि इट्स नॉट जैसा मैं चाहती थी या जैसा मैं चाहता था, वैसा नहीं।

0: हो रहा है, इट्स नॉट सेटलिंग इन. तो या ऐसा भी हो सकता है कि आप देरी से, आप अनसेटल्ड है शुरुआत में, तो आपको माइंड को अपना सेटल करना है, थोड़ा जल्दी उठना है, थोड़ी देर आप सोचते हैं अच्छा 5 मिनट और स्नूज पर करके आप सोते हैं, एंड देन लेट हो जाता है, फिर रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चुक. एनीवे, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे, कहानी किस्मत की। इस मूवी से इसको लिया था हमने। ये हमारे पास एक छोटी सी पोएट्री है। जो अप्राप्त है उसे पा लेना कठिन नहीं है, जो अप्राप्त है उसे पा लेना कठिन नहीं है, परंतु जो प्राप्त था उसे खोकर फिर पाना अधिक कठिन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेना, उसे ऑब्टेन करना या अटेन करना, इट्स नॉट हार्ड बिकॉज यू कैन वर्क हार्ड फॉर इट। लेकिन जो था आपके पास उसे खोकर फिर पाना, इट्स वेरी हार्ड। तो ये जरूर याद रखे दोस्तों, कि जो है गिव इट लॉट्स ऑफ लव, हो या कोई चीज़ भी हो, मटेरियल थिंग या कोई रिलेशनशिप भी, गिव इट लॉट्स ऑफ लव, गिव यू 100% टू कीप इट विद यू। एक्चुअली ये राइटिंग जो इसको लिखी गई है, इंडियन पोएट महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। और ये जो महादेवी वर्मा थी वॉज एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज पोएट एंड एसेस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। एंड क्या खूब लिखती है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा इसकी जो लिखती है ये पोएट, बड़ा अच्छा मैसेज देती है। और चलिए एंजॉय करते हैं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: दोस्तों, इट्स 7:32 और सुबह का सफर में आप शामिल हैं। मैं हूं आपके साथ ही नीलम। हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 19 जून है आज और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए दोस्तों। और अगर जो एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Madhmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
13: वेलकम बैक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैसे जो कोई स्ट्रेस हम होल्ड करते हैं अपने बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी है वो हमें खुद ब खुद बता देता है कि क्या फील कर रहे हो। दो हम उस टाइम पर नहीं जानते हैं कि एक्चुअली एक अगर सर पिराता है या थ्रोट में टेंशन फील होती है या शोल्डर्स हर्ट करते हैं या लोअर बैक पेन करता है या स्टमक में इनडाइजेशन सॉर्ट ऑफ ब्लोटिंग वाला फीलिंग होता है, आप सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअली ये इंडिकेट करता है ये बॉडी हमारा कि समथिंग इज हैपनिंग ऑफकोर्स, लेकिन किस तरह से पहचान आपको लीड करता है टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो बेसिकली आप अगर अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि आपका रिस्ट में पेन है, आपके हैंड में पेन है, अचानक से कुछ हुआ नहीं लेकिन ना चोट लगा है ना कुछ, लेकिन आपका हैंड में पेन है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, यू नो? एंड आपके थ्रोट है जो वो टाइट है एंड टेंशन लगता है ऐसे, यू नो दैट फीलिंग जब आप रोना चाहते हैं एंड रो नहीं पाते हैं एंड दैट एकिंग फीलिंग इन योर थ्रोट जो होता है, वो उस टाइप का एक फीलिंग होता है। अगर ऐसा फील हो रहा है आपको कि आप जानते नहीं क्यों हो रहा है, तो आई हैव गॉट दो प्रॉब्लम्स मेरे पास है जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। एक्चुअली ये मैंने राधी देवलुकिया के साइट से लिया है और शेयर करना चाहेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहती है कि अगर आपके स्टमक या गट में कोई पेन है, सो यू हैविंग एक्सपीरियंसिंग पेन, तो कहते हैं कि द गट होल्ड्स अनडाइजेस्टेड लाइफ इमोशंस एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेस दैट हैवन बीन फुली एक्सप्रेस्ड और प्रोसेस्ड। टेंशन और डिसकम्फर्ट हियर कैन अपीयर व्हेन यू हैवन फुली स्टमक्ड अ सिचुएशन or feeling or a feeling. Supporting your gut helps improve digestion, emotional processing and a sense of internal stability. Kabhi kabhi koi aisi cheez rehti hai jo achhi tarah se aapko aap dekhte hain usko lekin aapko samajh mein nahi aata hai ki ye kya ho raha hai. So this is an emotion which is you haven't adapted to it, या आपने उसे अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं किया है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव ब्लैंक्ड आउट। तो ऐसे ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं ये अनप्रोसेस्ड होते हैं, तो आपने इसको अभी पूरी तरह से आपने इसे समझा नहीं है, तो उस टाइम पर यू हैव दिस आपके जो गट में फीलिंग होती है कि पेन होता है या टेंशन रहती है, ब्लोटिंग होता है, could be reason for food. तो अलग बात है कि कोई आप ऐसे food खाते हैं कोई different type का, you know, and then you have a little bit of gas या bloating वाले problems, then that's different because आपका आप जानते हैं कि ऐसा food खाने से मुझे ऐसा होता है. So लेकिन उसके अलावा आपका डाइट अच्छा है सब चीज, लेकिन अचानक से आपको ऐसा पेन होता है आपके टमी में, तो आप सोचते हैं कि क्यों हो रहा है. देन अच्छी तरह से आप देखें या सोचें कि क्या हो रहा है उस टाइम पे आपके लाइफ में. शायद कुछ ऐसा चीज जिसे आप अपना नहीं रहे हैं या अपना यू नो नॉट एबल टू थिंक इट थ्रू, सो इट कुड बी दैट. सो उसका जो सोल्यूशन दिया है, यू हैव टू अफर्मेशन दिया है, यू हैव टू स्लो डाउन and process life one bite at a time. So, थोड़ी थोड़ी से आप उसे ले, उसे समझे, समझने की कोशिश करें. So, ये एक वाला था. और दूसरा वाला, अगर आपके lower back में pain हो रहा है, the lower back often reflects fear around survival of or feelings of being unsupported by others or by life itself. Tension here can show up as stiffness, pain or a sense of caring too much alone. And supporting your lower back helps provide stability, ease, and a sense of being held, both physically and emotionally. तो दोस्तों वैसे जो हमारे चक्रस होते हैं, जो रूट चक्र होता है, सेक्रल चक्रस होते हैं, ये सब हमारे जो बॉडी में जो पेन होता है, ये अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो उसी के कारण भी हो सकता है. तो आप चक्रस पर सर्चअप कर सकते हैं किस तरह से, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं एंड यू वर्क टूवर्ड्स इट एंड यू वांट टू लर्न अबाउट इट, तो आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे जो चक्रस है, हम अगर ब्लॉक रहते हैं तो किस तरह से थ्रोट चक्र भी रहता है, किस तरह से हमें यू नो अफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ में. एंड पेन्स यू गो थ्रू एंड आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. सो अगर कोई चीज़ जो आप बोलना चाहते हैं, इट कुड बी द ट्रूथ और स्टैंडिंग अप. इवन दो हमेशा अगर आप कहते हो कि कोई सच बोलते हो आप, एंड समटाइम्स नहीं, समटाइम्स नहीं, ऑल द टाइम द ट्रूथ ऑलवेज स्टैंड्स अलोन. एंड जहाँ पर झूठ रहता है वहाँ पर बहुत भारी भीड़ रहती है. सो द थिंग इज कि वो अकेले खड़े रहने में भी नीड्स अ लॉट ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. द थिंग इज कि आई बिलीव टोटली कि अगर कोई चीज़ आपके दिल में रहती है, आप उसको बोल नहीं पाते हो, एंड यू फील कि दिस इज द ट्रूथ एंड यू नॉट एबल टू से इट, देन यू हैव द थ्रोट चक्र विच इज अफेक्टेड एंड वहाँ पर पेन होता है आपको, बिकॉज इज यू नॉट एबल टू वॉइस आउट थिंग्स. सो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चेक इट आउट. और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे। वैसे कहते हैं जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। तो जो भी आप करते हो, प्रे करते हो एंड एवरीथिंग, जो इबादत करते हो वो केवल वर्ड्स नहीं होना चाहिए, आपके जो ख्यालात है, जो आप सोच रहे हैं, खुदा वो भी सुन रहा है। सो बी केयरफुल देयर। चलिए दोस्तों,

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखू भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
2: तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फिल्मी टिप टिप नहीं फैक्ट आपको बताते हैं। कुछ ऐसा है कि अमजद खान वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द मूवी शोले। हार्ड टू बिलीव बट अमजद खान वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द मूवी शोले बिकॉज द स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर फाउंड हिज वॉइस वीक फॉर द रोल ऑफ गब्बर। इमेजिन, he was the crucial reason for Shole to turn blockbuster. Kitne aadmi the. I know, that's one of his famous dialogues. And aur bhi hai, you know. So, agar aapne Shole nahi dekha hai, toh kafi lambi movie hai. But you absolutely enjoy it. People remember the movie for his by his famous dialogue delivery. तो हिज वॉइस, यू थिंक वॉइस वॉज वीक, आई डोंट नो, अगर बुलंद आवाज चाहते हो जैसे अमरीश पुरी की थी, लेकिन समटाइम्स द लाइटर एंड डिफरेंट वीक सॉर्ट ऑफ, नॉट वीक आई वुड से, बट अगर कोई डिफरेंट वॉइस में अगर आप बैड पर्सन एक्ट करते हैं, विलेनियस रोल करते हैं, दैट्स मोर क्रीपिया एक्चुअली। सो एंड अगर बुलंद आवाज होता है देन यू थिंक, नॉट दैट मैं कह रही हूँ कि अमरीश पुरी इज डिफरेंट, ये उसकी एक्टिंग डिफरेंट है, ओ माई गॉड हिज या एनी वे। यहाँ पर भी हम अमजद खान की बात कर रहे हैं। द थिंग इज कि कभी कभी जो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस होते हैं, जो बिग वॉइसेस नहीं रहते हैं, अगर आप विलेनियस रोल करते हैं देन ऑब्वियसली यू नो ही इज़ द बैड पर्सन, राइट। लेकिन क्रीपी वॉइसेस, जो लाइटर वॉइसेस होते हैं और इतनी बुलंद नहीं होते हैं, दे स्केर यू मोर एक्चुअली। एंड या चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत।

सो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। 4 मिनट हो गए हैं, 8:01 का सफर बाकी है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान।

वेलकम बैक दोस्तों। और 9 मिनट हो गए हैं 8 बजकर। और चलिए ट्रैफिक अपडेट देखते हैं। ओल्ड क्लीवलैंड रोड के पहलवा यहाँ पर सिग्नल फॉल्ट हजार है, ऑल लेन्स आर अफेक्टेड। न्यू मार्केट रोड विल्सटन में यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हजार है, वन लेन इज ब्लॉक्ड ईस्ट बाउंड टुवर्ड्स लटविच रोड। और चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एवरीडे टिप देते हैं आपको। अगर लंबी सफर कर रहे हैं आप अपने गाड़ी में और कपल ऑफ आवर्स आपको जाना है, और आपका जो वेंट होता है वो अगर रीसर्कुलेटिंग पे होता है, यू हैव टू टर्न इट ऑफ। समझ लो अगर 6 आवर्स ड्राइव शायद आपको है, तो आपका जो वेंट अगर रीसर्कुलेटिंग में होता है तो ये क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, इट मेक्स यू स्लीपी ड्यूरिंग द रोड ट्रिप्स। सो बेसिकली द एयर इनसाइड द कैबिन कीप्स ऑन रीसर्कुलेटिंग एंड कोई फ्रेश एयर नहीं आता है। सो या ये एक छोटा सा टिप है। और दोस्तों, अगर जो कभी आपको फ्लाई बाइट होता है, आपको बहुत इची होती है उसके बाद, तो क्या कहते हैं कि अगर स्पून को आप हीट कर लें एंड देन पुट इट

ऑन द जहां पर बाइट किया हुआ है वहां पर धरे से क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो आपको इची करते हैं. सो दैट हैव्स देयर. एक और वाला है दोस्तों, अगर आप एक्नी से सफा करते हैं, ढेर सारे एक्नी है आपको, तो वैसे बताते हैं कि जो अपने पिलो केसेस है एवरी सो ऑफन आपको चेंज करना होता है, एंड इससे आपके जो एक्नी में इम्प्रूवमेंट होता है आप यू नो. लेकिन अगर एवरी सिंगल डे आप पिलो ऑब्वियसली पिलो केस आप चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप उसकी जगह पर एक क्लीन टी शर्ट भी धर सकते हैं, एंड ओवर यू पिलो इट अकम्प्लिशेस द सेम इफेक्ट. सो यू डोंट हैव टू चेंज योर पिलो केस एवरी डे, यू कैन पुट अ क्लीन टी शर्ट ओवर इट. एंड चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: वेलकम बैक दोस्तों। गुजार साहब कहते हैं, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। बहुत ही खूब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

बस तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, फिल्म आरजू से इसको हमने लिया। वैसे कहते हैं कि एक्चुअली नॉट कहते हैं, ये न्यूज़ में है, वायरल है, द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हैज़ ओर्डर्ड द टाइटल हाउसवाइफ टू बी ऑफिशियली रिप्लेस्ड विद जनरेशन शेपर टू ऑनर द रोल ऑफ मदर्स इन शेपिंग फ्यूचर जनरेशन। तो इट्स सो इट इज डायरेक्टेड टू द लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस सिम्बोलिक चेंज aims to formally recognize the vital and profound role stay-at-home mothers handle in nurturing families. By reframing motherhood as an active nation-building effort, the policy highlights how these women instill core values of responsibility and belonging in their children. That's such a beautiful thing to do, right? एक्चुअली द थिंग इज कि एक वर्ड चेंज करने से पूरा नजरिया ही चेंज होता हो जाता है। सो अभी आप कहते हो कि हाउस वाइफ एंड वेन यू से जनरेशन शेपर, देन टोटली योर पर्सपेक्टिव, योर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स, इट जस्ट ऑटोमेटिकली चेंजेस। वैसे ही अभी यहाँ से दूसरी बात करते हैं, अभी जब नॉट अभी फ्यू ईयर्स बैक जब मैं हम इंडिया गए थे तो मुंबई जो एयरपोर्ट पर वहाँ पर लिखा था डिफरेंटली एबल। अगर जैसे कि डिसएबल्ड जो रेस्टरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था डिफरेंटली एबल। सच अ ब्यूटिफुल वे टू से कि जो लोग यू नो यूज़ करते हैं व्हील चेयर्स एंड स्टफ एंड टू मोबिलाइज, जो चल नहीं पाते हैं एंड एवरीथिंग, सो यू नो एंड आपका दिमाग यू नो एकदम से चेंज हो जाता है, लुकिंग थिंग्स डिफरेंटली। इट्स सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग आई विश वी हैड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर, यू नो एंड बट वी कैन स्टार्ट एट द रूट लेवल, राइट? Oh gosh, I know. I guess जिन लोगों के पास वो वे होता है कि आप वहाँ पर उस प्लेस पर है जहाँ पर आप डिफरेंस मेक कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे हमारी अगर कम्युनिटी में अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि डिसेबल टॉयलेट्स, आप लिख सकते हैं डिफरेंटली एबल। It's a beautiful way to say ki it's a respectful way to say, I guess. Anyway, bas words aapko aapka nazariya change karta hai. It's such a beautiful thing. I think it's beautiful. Chaliye dosto, aage badhte hain. Actually, ye geet I've never played. Lekin sort of beat acha hai. Enjoy karte hain.

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: वेलकम बैक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि जापान है, यहाँ पर isn't it only known for its technology, और लेकिन इसका जो कल्चर है, इसका माइंडसेट है, किस तरह से ये लोग जीते हैं। अभी आप देखते हो कि जापान में इतने सारे एथक्विक्स जब आते हैं, हाउ दे अडॉप्ट टू द थिंग एंड देन मूव अहेड, मूव ऑन। ये उनका माइंडसेट है जो उनको इतना पावरफुल बनाता है। तो जो जापानीज कल्चर में एक सीख है, कुछ ऐसा जाता है, उसको कहते हैं गॉड वरी। और ये ऐसा है कि यू हैव टू मास्टर वन स्किल बिफोर चेजिंग द नेक्स्ट। सो इट इज गॉड वरी जो है, इट्स अ डीप डेडिकेशन टू वन क्राफ्ट। और मेनी मास्टर्स स्पेंड डेकेड्स रिफाइनिंग अ सिंगल स्किल इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली स्विचिंग डायरेक्शंस। आइडेंटिफाई द वन अबिलिटी दैट विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर। Practice it consistently and let go of distractions that pull your attention away. So it's such a beautiful thing, and it's a lesson actually, ki hum koi cheez seekhte hain jab to hamara jo mind rehta hai itna फ्लिट होता है, इधर से उधर। आप सीखते हो एक स्किल और उसको छोड़कर फिर दूसरे पे जाते हो, लेकिन बात वो होगी अगर आप एक कोई स्किल है उसको अच्छी तरह से रिफाइन करें एंड देन गिव योर परफेक्ट बेस्ट 100% आप उसको दे, एंड फिर उसके बाद अभी कोई नहीं कहता है आप कोई दूसरा स्किल नहीं सीख सकते। लेकिन जो आपका अभी आप समझ लो एक मोटो रिवाइंडर हो, इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ, राइट। जिस तरह से आपको जो पतली पतली वायर्स है मोटो में, आपको उसको रिवाइंडिंग करना पड़ता है, वाइंड करना पड़ता है, इट्स अ स्किल। एंड उसको आप ऐसे ही नहीं सीखते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको उसको करना पड़ता है, तो ही आप एक परफेक्ट मोटो रिवाइंडर बन सकते हो। अभी आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हो तो ऐसे ही नहीं, यू अभी आई थिंक तबला अगर बजाना चाहते हो यू नीड टू हैव एटलीस्ट कितने आवर्स ऑफ प्रैक्टिस बिफोर यू कैन एक्सेल एट इट। सो रिफाइन योर स्किल। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, अपने माइंड को भटकने ना दे एंड उसको फोकस्ड रखे और जो सीख रहे हैं उसको मास्टर करे फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ही देर का सफर बाकी है दोस्तों। याद दिला दे, 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया। आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा आपके लिए। हैव अ वंडरफुल डे, ब्यूटिफुल वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन, नमस्कार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: उसकी हर चीज में अल्लाह सुबहानु व तआला ने बरकत रखी है। वहां की किसी चीज के मुताबिक बदगुमानी करने वाला अपने ईमान की को नुकसान पहुंचाता है। उलमाए किराम ने एक वाकया लिखा है, हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग हज के लिए तशरीफ ले गए, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, खाने के लिए बैठे तो वहां दही आया, यूगर्ट आया, दही आया, वो कुछ खट्टा था। उनकी जबान से ये निकला, ये तो बहुत खट्टा है, मजेदार नहीं है, हिंदुस्तान का दही बड़ा लजीज और मजेदार होता है। जबान से ये कलिमात निकल गए, ये अल्फाज निकले, रात को सरवर कौलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और निहायत गुस्से में फरमाया, जब मदीना के दही पर तेरा तुझे पसंद नहीं है तो जाओ, यहां क्यों आए हो, हिंदुस्तान ही में रहो। आपने नाराजगी दिखाई, नाराज हो गए। इसलिए उलमाए किराम और बुजुर्गान मिल्लत फरमाते हैं कि वहां की किसी चीज के वादे के अंदर भी बुरे अल्फाज जबान से न निकालने, बल्कि उलमाए किराम तो यहां तक फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के रहने वाले भाइयों और बहनों के साथ भी हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं, किसी तरह की उनको तकलीफ मत पहुंचाओ, क्योंकि ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं और आपके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात को इंसान तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए मदीना ऐसी मुबारक बस्ती है जिसके मुताबिक कहने वाले ने सच कहा है, इलाही खुदाया ये मदीना कैसी बस्ती है, खुदाया ये मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह सुबहान हो तारा कि अपनी जात के साथ भी मोहब्बत नसीब फरमाए और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए। हजारों सलाम और दुरूद हो उस मुकद्दस जात पर, उस मुकद्दस हस्ती पर जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कयामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए भेजी है। अल्लाह सुबहानहु व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क नसीब फरमाए और आपके उसवे हसना और आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये मदीना कैसी बस्ती है जहां पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है, यहां की हवाओं में और यहां की हर चीज में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बरकत रखी है। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलाम या खातमुन नबीयीन, खुदा की सदा उन पे हो रहमतें, खुदा की सदा उन पे हो रहमतें, जिन्होंने दिलाई है नेमतें, बड़ा मर्तबा उनका है दा कलाम, बड़ा मर्तबा है उनका दा कलाम, हमेशा हो उन पर दरूद व सलाम, हमेशा हो उन पर दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही।
1: आप सुन रहे थे आज जुमा है प्रोग्राम में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। इस स्टेशन पर आज जुमा है प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर करीबन 9:30 बजे।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم

और खुली किस्मत जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत, निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बना।

ना पाया जिसका हम पाया, लतीफुल जिस्म ऐसा के नहीं है जिस्म का साया, जमाने में जो बनकर रहमत

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।